0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये ने उनका कुड़िया हॉस्टल सेतिटे रोम मिस पन।
4: உஷா சன்ஃப்ளவர் ஆயில் நிறுவனத்தின் நல்வாழ்த்துக்கள்.
3: என்ன உங்க குழந்தைய ஹாஸ்டல்ல சேர்த்துட்டு ரொம்ப மிஸ் பண்றீங்களா?
5: நான் ஏன் மிஸ் பண்றேன்? அவங்க வீக்கெண்ட் ஆனா வீட்டுக்கு வந்துருவாங்களே, வீட்டையும் மிஸ் பண்ண கூடாதுன்னு தான் வீக் லாங் போர்டிங்ல சேர்த்திருக்கேன்.
6: செட்டிநாடு வித்யா மந்திர் CBSE கரூர் 2026-27 கல்வியாண்டு சேர்க்கை நடைபெற்று வருகிறது. தொடர்புக்கு 9043533367.
7: கிருஷ்ணகிரி தர்மபுரி மாவட்டங்களில் தீர்க்க முடியாத நாள்பட்ட தலைவலி, கழுத்து வலி, இடுப்பு நரம்பு வலிகளுக்கு ஒரு முழுமையான வலி நிவாரண மையம் ஸ்ரீ சரஸ்வதி ஆர்த்தோ அண்ட் ஸ்பைன் சென்டர், சேலம் ரோடு, கிருஷ்ணகிரி.